FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 30 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हम हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनिए हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: और ये कार्यक्रम भक्ति धारा में अब सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, सुरेश वाटकर और हरिओम शरण के स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम बुध गुरु और शनिवार को।
2: हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रहे।
1: साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियां,
3: प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली।
1: मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद,
3: जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के चंद गीत।
4: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
1: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत
3: FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
0: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के ठीक 6:30 लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
5: ईश्वर इंसान की भलाई चाहता है। जो लोग उसकी उपासना करते हैं और उसके बंदों से

0: प्रेम करते हैं वो उन्हें भी संसार के सब सुख देता है, और जो उस पर विश्वास नहीं करते उनकी जरूरतें भी पूरा करता है। जरा सोचिए, यदि हवा पानी और रोशनी पर ईश्वर टैक्स लगा दे तो इस दुनिया का क्या हाल होगा। परंतु दुनिया को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी इंसान पर है, इसीलिए लोक कल्याण की भावना का महत्व सर्वोपरि है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की कुछ महत्वपूर्ण हदीस इस संदर्भ में लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है। आप फरमाते हैं, लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तुम में से कोई ईमान वाला नहीं होगा जब तक कि वो अपने पड़ोसियों के लिए वो कुछ पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। आपस में ईर्ष्या न करो और ना आपस में बैर भाव रखो और ना परस्पर एक दूसरे से संबंध विच्छेद करो। अल्लाह के बंदे और भाई भाई बनकर रहो। सेवा के बिना हमारा प्रेम और हमारी उदारता विश्वसनीय नहीं हो सकती। कुरान शरीफ में आया है, और एहसान कर जिस प्रकार अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किए हैं, और धरती में बिगाड़ पैदा न कर। निसंदेह अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। दुनिया में जितनी विसंगतियां हैं वो इंसान ने पैदा की हैं। ईश्वर सबके साथ इंसाफ करता है। धरती अनाज पैदा करती है, नदी सबको पानी देती है, पेड़ों से लकड़ी और फल मिलते हैं। देखा जाए तो जीवन का कारोबार ईश्वर की दया पर निर्भर है। हमारे पास मशीन है, टेलीफोन, टेलीविजन, बाइक, मोटरसाइकिल के बिना भी जीवन यापन किया जा सकता है। परंतु यदि खाने की वस्तुएं ना हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा। विशेषकर पानी के महत्व से कौन इनकार कर सकता है। मशीन इंसान का पोषण नहीं करती, बल्कि इंसान मशीन का पोषण करता है। कुरान ईश्वर की महानता को बार बार दोहराता है ताकि मनुष्य अपनी कमजोरियों से वाकिफ हो सके और कोई ऐसा कार्य न करे जिससे जन साधारण को कष्ट पहुंचता हो। परंतु आज इंसान ईश्वर का दास नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों का गुलाम हो गया है, इसलिए गरीब इंसानों का दुख उसे दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि कुरान इंसान से अच्छे व्यवहार की कामना करता है। अच्छा व्यवहार करो माता पिता के साथ, नातेदारों, अनाथों और मोहताजों के साथ, निकट के पड़ोसियों के साथ, और साथ रहने वाले साथी के साथ, और मुसाफिर के साथ, और उनके साथ भी जो तुम्हारे अधीन हो। अल्लाह ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहता जो घमंडी और डींगे मारता हो। हजरत मोहम्मद साहब फरमाते हैं, सारे लोग खुदा का कुटुंब हैं, अतः लोगों में खुदा के निकट सबसे उत्तम वो व्यक्ति है जो उसके कुटुंब के साथ अच्छा व्यवहार करे। अच्छे इंसान वही हैं जो उपद्रव और बिगाड़ से घृणा करते हैं और चाहते हैं कि संसार में शांति की स्थापना हो, तो इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि इंसान आपस में मिलजुल कर रहें। खुदा अपने बंदों के दुख और तकलीफ को अपना दुख और तकलीफ मानता है, लेकिन इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है। काश इंसान अपने अंदर वो गुण पैदा करता जो खुदा को पसंद है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन।
2: फुलवारी बच्चों की मनोहारी आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति, जिसमें रविवार की सुबह महत्वपूर्ण विषयों पर रहती है चर्चा जारी। नहीं भूलते हम चर्चा के बीच सुनवाना बच्चों को मीठे मीठे गीत। इतना ही नहीं है काफी, नन्हे मेहमान में लेकर आते किस्से कहानियां हमारे नन्हे साथी। देश दुनिया में हमने है ठाना, बच्चों को बताना है दुनिया का ताना बाना। फुलवारी बच्चों की मनुहारी आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति, रविवार सुबह 8:30 बजे।
1: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। स्वर है रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर का।

श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए हनुमान अपने को मात्र उनका एक दूत बताते हैं। वे रावण को चेतावनी देते हैं कि राम से द्रोह करने वाले की रक्षा हजारों शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं कर सकते, किंतु पवन पुत्र के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति युक्त वचन सुनकर भी कुपित रावण उस वानर का वध करने की आज्ञा देता है। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दूत का वध करना नीति संगत नहीं है। रावण हनुमान का उपहास करते हुए उनका अंग भंग करके छोड़ देने का आदेश देता है। चूंकि वानर को अपनी पूंछ से अत्यधिक मोह होता है, इसलिए हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाती है।

नीति संगत नहीं है। रावण हनुमान का उपहास करते हुए उनका अंग भंग करके छोड़ देने का आदेश देता है। चूंकि वानर को अपनी पूंछ से अत्यधिक मोह होता है, इसलिए हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर था रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर का। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं नानक राम बारस्कर और साथी। लीजिए, प्रस्तुत है

यह प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ

0: करते हैं, ओके वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है. अब एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चाहिए अलग अलग चीजें खोलते हैं, ओके क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है, ओके बुक इस तरीके से खुलती है, ओके अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट, ओके दैट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं. कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है. और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चले ही जाएंगे. प्लस आई एम अ टीचर, तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ. कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा. हाँ, जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं, तो वो जो विजुअल थिंग्स है, ओके दैट गोज इन हिज हेड, ओके बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग. आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है. जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक. तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं.
1: बिल्कुल,
0: दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड.
1: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह में, श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं, अमूमन पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: सी, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है, राइट, एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा. ओके कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग, एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं. नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इश्यूज, नो अंडरलाइंग इश्यूज एज सच, बट येस लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन सेम थिंग बॉयज डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ भी नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं. वैसे
1: बिल्कुल, यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल.
1: ए दिल है मुश्किल जी, ना ये जी सुनते हैं ये गाना. ए दिल

0: डॉक्टर गायत्री हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल हैं, तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊं? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज

0: इन्वायरमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, नहीं बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है।
1: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं।
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहां पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लू और कैसे लू। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उसको बीएड का कोर्स करना है, एमएड का कोर्स करना है या डिसेबिलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज एज पर द स्कीम बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है तो इट इज टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है जहां पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहां पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है तो मुझे कहाँ जाना है। ओके, ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है, अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देयर इज नो इंटरप्रेटर। ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज्यादा इनरोल होना जरूरी है। थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी, इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, पर फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइन अप हम करें तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देशभर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे, कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल,
1: आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं।
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं। एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड। ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे। एंड आई यूज टू फील ऐसे ये कुछ अलग है, ये क्या है। ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं। एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स। कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहां पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, PhD करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं। दोनों काफी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफी अलग है, बट दीज आर ऑल लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। और अगर मैं कहूं कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफी ज्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है। एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू, ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज को देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल. भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज उनके पहुंच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है. वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, some people say, I have a vertigo issues and all, okay? So this is a new thing which is being developed in the department. फिर हमारे पास एक department है जिसको हम बोलते हैं speech language pathology department. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में problem आती है, stutter करते हैं, stammer करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एडुकेशन देखते हैं उन बच्चों का कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहां पे भी तकलीफ होती है तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एडुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं डिप्लोमा से के पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. एंड काफी सारे कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके. रीच द अनरीच, तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHT NIC वेबसाइट है. आप वहां जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करे, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.
0: श्योर.
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विथ मी.
1: तुमको देखा तो ये ख्याल है.
0: ऑल गुड.
1: तो सुनते हैं ये.
0: ठीक है.

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहां कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग, सो थैंक्स टू देम। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वजंग संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। उस रोज गाया था उसने एक गीत, प्यार हो मेरा बहार हो मेरा। उसके इस गीत से बहार आ गई थी जिंदगी में, पर अचानक वक्त की धूल भरी आंधी चली और जिंदगी के मनके के कुछ मोती टूटकर बिखर गए। जिंदगी उदास गीतों का सिलसिला बन गई।

मुलाकातें होती रहीं, इजहार मोहब्बत होती रही, पर मुलाकात में शिकवे शिकायत के रंग घुल गए। रूठने मनाने का सिलसिला तेज हो गया। नजदीकियां दूरियों में तब्दील होने लगी, नजरें खफा हो गईं, पारदर्शी दिल पर धुंध छा गई, गुफ्तगू खामोशी में बदल गई और फिर जिंदगी को उदास रंग रास आ गया।

हुस्न और इश्क का मिलन होता है तो समझ जाती है जिंदगी। इश्क में जब दिल जकड़ जाता है तो जिंदगी की परेशानियां आसानियों में बदल जाती हैं। लेकिन जिंदगी कभी एक सुर में नहीं गाती। जिंदगी के थाट पर विविध रंगी राग गाए जाते हैं। जिंदगी के समीकरण डगमगाए और प्रेम राग उदास राग में बदल जाता है।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। बदलता है प्रेम का मौसम, काली घटाएं घिराती हैं, जिंदगी की राहें भटक जाती हैं, कांटों का लंबा सफर बन जाती है जिंदगी। मोहब्बत भरी बातों में तकरार के अल्फाज खास हो जाते हैं, मोहब्बत के लिए वक्त कम पड़ जाता है, तकरार की घड़ियां लंबी हो जाती हैं। जिंदगी मोहब्बत और तकरार से मिलकर बनती है, पर जिंदगी तभी लुभावनी लगती है जब मोहब्बत भरे लम्हों से आबाद होती है जिंदगी। दो दिल रूठते हैं तो प्यार का मौसम उदास हो जाता है।

जिंदगी की हर कहानी में उसका नाम लिख दिया था। डायरी के हर पन्ने पर उसी की बातें दर्ज हो गईं। दुनिया के बहुत सारे रास्तों पर चलकर देखा, सबसे खूबसूरत रास्ता वही लगा जिस पर पड़े थे उसके कदम। लेकिन अचानक वक्त ने करवट ली, उसके कदम तेज हो गए, वो रास्तों की बजाय हवा में उड़ने लगा। बस उसी रोज से जिंदगी की राह में कांटे बिछ गए।

ख्वाहिशों के गांव में एक आशियां बनाया था, मन्नतों के धागे से गूंथी थी प्रेम की माला। मुश्किलों की आंधी ना आ जाए ये सोचकर सदका उतारा था। नीली आंखों की नदी में सुनहरे ख्वाब पनाह पाते थे, पर एक रोज काली घटाएं घिरी, नैनों में नदी तिराई, बरसने लगे नैन, होठों पर उदासी की बूंद ठहर गई।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को खुशनुमा बनाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

नमस्कार, प्रणाम, राम राम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे रोहित और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बैतूल का आपका अपना सबसे चहेता और युवाओं की धड़कन प्रोग्राम युववाणी 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। बैतूल के जितने भी जाबाज, जिंदा दिल और ऊर्जावान श्रोता इस वक्त मुझे अपने रेडियो सेट्स पर सुन रहे हैं, उन सभी को रोहित का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, मौसम चाहे जो भी हो, लेकिन जब युववाणी की घड़ी आती है तो हमारे दिलों का तापमान और उत्साह हमेशा हाई रहता है ना दोस्तों। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज युववाणी के इस बेहद खास और आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी आज के बाद में मैं जो मुद्दा लेकर आया हूं वो सीधे आपकी जेब, आपकी सेहत और हमारी सबसे खूबसूरत धरती के भविष्य से जुड़ा है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम बड़ी बड़ी गाड़ियों और रफ्तार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आज रोहित आपको याद दिलाने आया है उस पुरानी वफादार और सबसे सच्ची दोस्त की जो हमारे घर के किसी कोने में धूल खा रही होगी। जी हाँ, समझ गए ना आप। आज की बात का हमारा विषय है साइकिल, यानी खुद और प्रकृति के स्वास्थ्य के दो पहियों की सवारी। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम इस दो पहियों की जादुई सवारी पर निकलने वाले हैं। पहला पहिया, खुद का स्वास्थ्य और फिटनेस का सच। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सवारी के पहले पहिए की, यानी हमारी खुद की सेहत, हमारा खुद का स्वास्थ्य। आजकल के युवाओं में एक नया ट्रेंड चला है फिटनेस का, सिक्स पैक्स का, जिम जाने का। अच्छी बात है, फिटनेस होनी चाहिए, लेकिन जरा सोचिए, हम जिम की बंद दीवारों के अंदर एक ही जगह

पर खड़े होकर ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए हजारों रुपयों की फीस भरते हैं, महंगे महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे घर के आंगन में खड़ी वो दो पहियों की साइकिल दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे सुलभ और बिल्कुल मुफ्त काजिम है। जब आप सुबह सुबह हमारे बैतूल की खूबसूरत वादियों में लल्ली चौक से लेकर कोठी बाजार की सड़कों पर या फोरलेन की तरफ साइकिल के पैडल मारते हुए निकलते हैं, तो बॉस वो जो ताजी हवा आपके फेफड़ों में जाती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। साइकिल चलाना सिर्फ पैरों की कसरत नहीं है, ये आपके दिल को मजबूत बनाता है, आपके स्ट्रेस को छूमंतर करता है और आप जब सुबह की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ती है तो पसीना बहता है, तो जो ग्लो यानी कि चमक चेहरे पर आती है न वो किसी महंगे फेशियल या ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं आ सकती। मेडिकल साइंस भी कहता है कि रोज सिर्फ आधा घंटा साइकिल चलाने से दिल की बीमारियों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। तो भाई जब मुफ्त में इतनी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है तो पैडल मारने में कंजूसी क्यों? दूसरा पहिया, प्रकृति का स्वास्थ्य और हमारा फर्ज। अब आते हैं इसके दूसरे पहिए पर जो हमारे प्रकृति का स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण की सेहत। दोस्तों हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की वजह से हमारी धरती का क्या हाल हो रहा है, हमारी गाड़ियां, हमारी बाइक्स, जितना धुआं उगल रही है उससे हमारी हवा जहरीली होती जा रही है। हम हर छोटी सी छोटी चीज के लिए, चाहे पास की दुकान से दूध का पैकेट लाना हो या सब्जी मंडी से जाना हो, तो तुरंत बाइक की चाबी उठा लेते हैं या कार की चाबी उठा करके चले जाते हैं। सोचिए जब आप पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी छोड़कर साइकिल की सवारी चुनते हैं तो आप सिर्फ ईंधन का पैसा नहीं बचा रहे होते हैं, बल्कि आप इस धरती को, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक सांस लेने लायक साफ हवा तोहफे में दे रहे होते हैं। साइकिल एक ऐसी अनोखी सवारी है जो न कोई धुआं छोड़ती है, न ही कान फाड़ने वाला शोर यानी कि नॉइस पोल्यूशन करती है। ये बिल्कुल खामोशी से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पर्यावरण को संवारने का काम करती है। ये प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का सबसे खूबसूरत जरिया है। यूथ आइकन और आज का सिंधा संदेश के बारे में हम बात करेंगे। मेरे युवा साथियों, युवा वो नहीं है जो सिर्फ उम्र से युवा हो, युवा वो है जो अपनी सोच में जागरूक हो, जो समाज को बदलने की ताकत रखता हो। आज दुनिया के बड़े बड़े देशों में जैसे नीदरलैंड या डेनमार्क में बड़े बड़े नेता, डॉक्टर्स और कंपनी के सीईओ सूट बूट पहनकर साइकिल से अपने दफ्तर जाते हैं, वहां साइकिल चलाना स्टेटस सिंबल माना जाता है, तो फिर हमारे यहाँ साइकिल चलाने को छोटा क्यों समझा जाए? साइकिल चलाना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक बेहद कूल और जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है। इसलिए आज युवाणी के इस मंच से आज की बात में आपका दोस्त रोहित आपसे एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटा सा चैलेंज करने आया है। क्या हम सब मिलकर ये कसम खा सकते हैं कि हम हफ्ते में कम से कम एक दिन, सिर्फ एक दिन हम अपनी बाइक या कार को आराम देंगे? छोटी दूरियों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ साइकिल का इस्तेमाल करेंगे? यकीन मानिए जब बैतूल का हर युवा एक एक पैडल खुद की सेहत के लिए और एक एक पैडल इस प्रकृति के लिए मारेगा तो हमारा बैतूल और ज्यादा हरा भरा, स्वच्छ और स्वस्थ बन जाएगा। तो दोस्तों उठाइए अपनी साइकिल की चाबी, वैसे साइकिल की चाबी तो होती नहीं, बस पैडल मारिए, निकालिए उसकी धूल और निकल पड़िए एक सेहतमंद सफर पर। जिंदगी का बैलेंस बनाना है तो आगे बढ़ना ही होगा। आज की बात में मैं रोहित की बातें आपको कैसी लगी, मुझे पत्र लिखकर या हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप बता सकते हैं। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

युवाणी सुन रहे मेरे सभी प्यारे दोस्तों का रेडियो सेट पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे रोहित। दोस्तों, अब वक्त हो चला है युवाणी के उस सेगमेंट का जो हमारे जड़ों से, हमारी इस मिट्टी से जुड़ा है। जी हां, वक्त है हमारे बेहद खास और सजिंदा सेगमेंट वसुंधरा का। वसुंधरा यानी हमारी धरती माँ, जो सदियों से हमें सब कुछ देती आ रही है, सांस लेने को साफ हवा, पीने को मीठा पानी और जीने के लिए खूबसूरत हरियाली। लेकिन दोस्तों, आज हमारे इस वसुंधरा की सबसे और माफ कीजिएगा, आज हमारे इस वसुंधरा की सेहत बहुत नासज है। वो अंदर ही अंदर कराह रही है और उसकी इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि हमारी एक बेहद मामूली और लापरवाही से भरी आदत है। आज वसुंधरा सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अदृश्य विलेन की, अर्थात खलनायक की, जो हमारे घरों में बहुत शान से दाखिल होता है लेकिन हमारी धरती को धीरे धीरे बंजर बना रहा है। आज की बात का विषय है सिंगल यूज प्लास्टिक के भयानक नुकसान। वो प्लास्टिक जिसे हम एक बार इस्तेमाल करो और फेंको, यूज एंड थ्रो वाले रवैये के साथ अपनाते हैं लेकिन जो कभी खत्म नहीं होता।

युवा साथियों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि यह सिंगल यूज प्लास्टिक बला क्या है। बाजार से सब्जी लाते वक्त मिलने वाली पतली सी पॉलिथीन, चाय कॉफी के डिस्पोजल कप, शादियों और पार्टियों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की प्लेट्स, चम्मच, स्ट्रॉ और पानी की बोतलें, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक है। हम इनका इस्तेमाल कितनी देर करते हैं? बमुश्किल 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, और काम होने के बाद हम इन्हें डस्टबिन में या सड़क पर फेंक देते हैं। अब सुनिए इसका पहला और सबसे बड़ा नुकसान। आप जिस प्लास्टिक की थैली को 10 मिनट में फेंक देते हैं, उसे इस धरती पर में पूरी तरह से नष्ट होने में यानी डिकम्पोज होने में 400 से 500 साल का वक्त लगता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 5 सदियां। यानी आज जो प्लास्टिक कप हम सड़क पर फेंक रहे हैं, वो हमारी आने वाली कई पीढ़ियों के बाद भी इसी मिट्टी पर कचरे के ढेर में मौजूद रहेगा। ये प्लास्टिक हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देता है, जिससे खेत बंजर हो रहे हैं और पेड़ पौधों का दम घुट रहा है। दोस्तों, जरा अपने बैतूल के आसपास नजर दौड़ाइए। जब हम और आप लापरवाही से प्लास्टिक की थैलियां सड़कों पर फेंकते हैं, तो बारिश के दिनों में यही प्लास्टिक बहकर हमारे नालों और हमारी जीवनदायिनी माचना नदी जैसी जलधाराओं में जाकर फंस जाते हैं। पानी का रास्ता रुक जाता है, गंदगी फैलती है और हमारे पानी के स्रोत जहरीले हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये प्लास्टिक की थैलियां कचरे के ढेर में जाती है, तो हमारे आसपास घूमने वाले बेजुबान जानवर जैसे हमारी गौ माता या अन्य पशु सब्जी और भोजन के लालच में उस प्लास्टिक को भी खा जाते हैं। हर साल हजारों बेजुबान जानवर सिर्फ इसलिए तड़प तड़प कर मर जाते हैं क्योंकि उनके पेट में किलो के भाव से प्लास्टिक जमा हो जाता है। दोस्तों, क्या एक जागरूक युवा होने के नाते हमारा दिल ये देखकर नहीं पसीजता? क्या हमारी एक छोटी सी सहूलियत किसी बेजुबान की जान से बढ़कर है? माइक्रोप्लास्टिक का खतरा हमारी सेहत पर सीधा वार। बात करते हैं हम माइक्रोप्लास्टिक के खतरे के बारे में, और बात सिर्फ जानवरों या नदियों तक ही सीमित नहीं है। ये प्लास्टिक घूम फिरकर वापस हमारी खुद की थैलियों में आ रहा है। कैसे? विज्ञान कहता है कि जब प्लास्टिक धूप और पानी के संपर्क में आता है, तो ये छोटे छोटे बारीक कणों में टूट जाता है, जिसे माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते। ये माइक्रोप्लास्टिक पानी और मिट्टी के जरिए हमारी फसलों, हमारी फलों, सब्जियों और पानी, पीने के पानी में शामिल हो रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हम हर हफ्ते अनजाने में एक क्रेडिट कार्ड के वजन के बराबर प्लास्टिक अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, और यही वजह है कि आज कैंसर, लीवर की बीमारियां और सांस की तकलीफें इतनी तेजी से बढ़ रही है। यानी जो जहर हम प्रकृति को दे रहे हैं, प्रकृति हमें जहर हमें वापस लौटा रही है। दोस्तों, यूथ एक्शन और संकल्प, और हम बात करते हैं इसके समाधान की। लेकिन दोस्तों, युवाणी सिर्फ समस्याओं पर रोने का मंच नहीं है। हम युवा तो समाधान खोजने वाले लोग हैं। अगर समस्या हमने खड़ी की है, तो सुधार भी हम ही लाएंगे। हम सिंगल यूज प्लास्टिक को मात देने के लिए हमें अपनी जिंदगी में 3 R का फॉर्मूला अपनाना होगा। रिड्यूस यानी कि कम करना, रीयूज अर्थात दोबारा इस्तेमाल करना, और रीसाइकल अर्थात पुनर्चक्रण करना। आज वसुंधरा सेगमेंट में के माध्यम से आपका दोस्त रोहित बैतूल के हर युवा से एक छोटा सा संकल्प चाहता है। पहला, जब भी बाजार जाए, अपनी जेब या गाड़ी की डिक्की में एक कपड़े का या जूट का थैला हमेशा साथ रखे। सब्जी वाले से गर्व से कहे, भैया पॉलिथीन नहीं चाहिए, मेरे पास मेरा थैला है। दूसरा, शादी ब्याह या पार्टी में डिस्पोजेबल प्लास्टिक की जगह मिट्टी के कूलर या पत्तलों, दोना पत्तल का इस्तेमाल को बढ़ावा दे, जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है। अगला, पानी की सिंगल यूज बोतलें खरीदने के बजाय अपने साथ एक स्टील या तांबे के टिकाऊ बोतल रखने की आदत डाले। सोचिए, शुरुआत बहुत छोटी है, लेकिन अगर बैतूल का हर युवा इसे अपनी आदत बना ले, तो हम अपनी इस वसुंधरा को कितना बड़ा तोहफा देंगे। तो मेरे जाबाज दोस्तों, आज से ही प्लास्टिक को कहे ना, और कपड़े की थैले को कहे हाँ। अपनी धरती माँ को, अपनी वसुंधरा को इस प्लास्टिक के जाल से आजाद कराना हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है। वसुंधरा सेगमेंट की ये जानकारी आपको कैसे लगी, और आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव करने जा रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। चलिए, अब वक्त तो चला है एक बहुत ही प्यारे और सुकून देने वाले गाने का। आप कहीं मत जाइए।

रोमांटिक किस्से के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हमें जिंदा रखती है, पेड़ पौधे। क्या आप जानते हैं कि पेड़ भी आपस में बात करते हैं? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने पाया कि पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे एक खास तरह के फंगस नेटवर्क से जुड़ी होती है, जिसे वुड वाइड वेब कहा जाता है। इसके जरिए वे एक दूसरे को पोषक तत्व भेजते हैं और खतरों के संकेत के बारे में चेतावनी भी देते हैं। सोचिए, प्रकृति का अपना इंटरनेट। बात करते हैं समय का गणित। मेरे युवा दोस्तों, अब आपको लगता होगा कि इतिहास बहुत पुरानी बात है, लेकिन सुनिए, जब इजिप्ट में गीजा के महान पिरामिड बने थे, तब दुनिया के एक हिस्से में मैमथ जो विशाल हाथी जैसे जानवर आज भी जिंदा थे। यानी जब इंसान इंजीनियरिंग के अजूबे बना रहा था, तब धरती पर हिमयुग के जीव मौजूद थे। इतिहास उतना दूर नहीं है जितना हमें लगता है। बात करते हैं अगले समुद्र की रहस्यमय गहराई के बारे में। अब जरा गहरे पानी में चलते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से आती है? अमेजन के जंगलों से नहीं, हमारी आधी से ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे पौधे से आती है। और समुद्र के बारे में एक और क्रेजी फैक्ट, इंसान ने चंद्रमा और मंगल के बारे में ज्यादा मैप बना लिए हैं, लेकिन हम अपने महासागरों का केवल 5% हिस्सा ही देख पाए हैं। सोचिए नीचे क्या क्या छुपा होगा। तो दोस्तों, ये तो थी अजब गजब दुनिया के कुछ किस्से। अब वक्त उजल आपके साथ बिताए इन खूबसूरत से लम्हों को यही विराम देने का। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। दीजिए अनुमति अपने रेडियो फ्रेंड रोहित को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 6 बजे हैं। समय है आपको आज के और कल के कुछ मुख्य आकर्षणों से अवगत कराने का।

श्रोताओं जानते हैं आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। कलाकार होंगे अनुप जलोटा। 6:30 पर समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 6:50 पर कार्यक्रम सबरस और 7:20 पर प्रस्तुत किया जाएगा अन्नदाताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। कार्यक्रम ग्राम सभा में आज की बात का विषय होगा विश्व साइकिल दिवस। साथ ही कृषि चर्चा का विषय होगा खाद बीज का सही प्रबंधन जरूरी है। साथ ही होंगे कुछ लोकगीत, बाजार भाव और भेंट वार्ता। रात 8 समय होगा कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ का। 8:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम साज और आवाज। रात 10 कार्यक्रम मेरी पसंद और 10:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार होगी संगीता दत्ता। रात 11 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। श्रोताओं ये थे आज की सभा के शेष मुख्य आकर्षण। अब नजर डालते हैं कल यानी गुरुवार प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। सभा आरंभ होगी 5:53 पर। 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। 6:30 कार्यक्रम चिंतन। 6:35 पर होगा श्री रामचरितमानस गान। 6:45 पर कार्यक्रम लोक रंजनी आप सुनेंगे। कलाकार होगी निर्मला गोहिया और साथी। 7:20 पर प्रस्तुत किया जाएगा क्लासिक फिल्म गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। 7:50 पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। 8:30 प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे। इसे हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे और इसी केंद्र से 10:00 होगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 10:35 पर प्रस्तुत किया जाएगा महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज की बात का विषय होगा बच्चों की सुरक्षा और संवेदनशील पालन पोषण। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 7 श्रृंखला मुलाकात के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा एवं पालन पोषण इस विषय पर बाल रोग विशेषज्ञ से बातचीत आप सुनेंगे। 5:30 होगा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा एआई और बदलती दुनिया के साथ हमें भी बदलना होगा। साथ ही श्रृंखला होगी खेल परिक्रमा। 6:05 पर शाम को आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर। 6:30 फिल्म संगीत। 6:50 पर सबरस। 7:20 पर समय होगा किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी का, जिसमें आज की बात का विषय होगा संयुक्त परिवार का महत्व समझे। साथ ही कृषि चर्चा का विषय बुवाई से पहले बीजोपचार का महत्व समझे। होगी भेंट वार्ता, बाजार भाव और होंगे कुछ दिलकश लोकगीत। 8:00 कार्यक्रम गाने नए पुराने। 8:30 कार्यक्रम युगल गीत और 10:00 होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:30 कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं ये थे आज की सभा के शेष और कल के कुछ मुख्य आकर्षण। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आपने ट्यून किया है कार्यक्रम गोधुली। आज के फनकार अनूप जलोटा।

इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम गोधूली यही संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आगाज कर रहे हैं प्यारे से गीत से, जिसे गाया है अरमान मलिक ने। बोल है मनोज मुंतशिर के संगीत रोचक कोहली का। फिल्म का नाम वाई चीट इंडिया।

आपने ट्यून किया है कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आइए सुनते हैं अगला गीत अनवर फिल्म से। बोल है सईद क्वादरी के संगीत मिथुन का और आवाज रूप कुमार राठौड़ की।

अभी आपने सुना अनवर फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, बोल है कमल खान के। इस गीत को लिखा है रजत अरोरा ने और संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का। फिल्म का नाम डर्टी। आइए सुनते हैं डर्टी फिल्म से, डर्टी पिक्चर से ये प्यारा सा गीत।

विधु विनोद चोपड़ा के बोल संगीत शांतनु मोइत्रा का, आवाज सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, वजीर के इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबरस का आगाज करते हैं इस भजन के साथ, आवाज है सोनू निगम की।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आपने ट्यून किया है कार्यक्रम सबरस। आइए सुनते हैं एक गजल, आवाज है हरिहरन की।

ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। आइए सुनते हैं कव्वाली।

Ah, he is.

0: का मूल्य लौट है तू पाप बना ने छेड़ा है जो कुछ तुम्हारा कर्म हो तो पार बेड़ा है।
1: इस कव्वाली के साथ ही कार्यक्रम सबरस यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के चौड़ीकरण के लिए 4,500 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में 5 से 12 जून तक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की। और राज्यपाल मंगू भगपति ने भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वि शताब्दी दिनोत्सव के तहत पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि शर्मिलानी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दोनों देशों के विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण ATF की कीमतें मार्च में 60 रूपए से बढ़कर मई में 182 रूपए प्रति लीटर हो गई थी। यह सहायता अगले 36 महीनों तक जारी रहेगी। इससे विमानन क्षेत्र के 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी राजदूत ने बताया,
1: ATF पल्स स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंट।

0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना को भी हरी झंडी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। 233 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी, यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ये मार्ग इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों के साथ साथ कई औद्योगिक और जनजातीय केंद्रों को भी बेहतर संपर्क देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली खास दरें नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री ने इसे वोकल टू लोकल की दिशा में देश की वैश्विक छलांग बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और 40 से अधिक लोगों को बचाकर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2,00,000 और घायलों को 50,000 रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण से होगी। इसके बाद 8 जून से स्वच्छता अभियान, 12 जून से 18 जून तक जन कल्याण शिविर और 19 से 20 जून को प्राकृतिक खेती पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये पूरा अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को संपन्न होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मुंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वी शताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने, स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आज कहा कि इस दौर में हिंदी पत्रकारिता को वीडियो, पॉडकास्ट और मोबाइल मंचों के जरिए युवा पीढ़ी से जोड़ना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सचिव ने अंतिम मतदाता सूची समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर शिवपुरी जिले की मैहर शक्ति और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ज्योति जाटक ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर ज्योति ने स्वरोजगार की राह पकड़ी और आज भी आत्मनिर्भर जीवन जी रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
2: हमारे गांव में समूह चलाती हूँ, मेरे समूह में 11 समूह है, उनकी बैठक करती हूँ और उन मतलब जो भी बैंक सखी का काम करती हूँ और बुक्की पर काम करती हूँ, तो उसमें मुझे 5,000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। और घर पर मेरी साड़ियों की दुकान भी है, तो साड़ियों की दुकान में चलाती हूँ संध्य सवेरे के टाइम में, तो आज मेरी इनकम 1,44,000 से अधिक है। मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद दूंगी।
0: भोपाल के रविन्द्र भवन में कल शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादें बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देश भर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। संक्षेप में नर्मदापुरम जिले के इटारसी में सभी आंगनबाड़ी

राज्य में मंगल दिवस के तहत सुपोषण दिवस व टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। देवास में आज एनसीसी के संबंध में सुझाव और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। अनूपपुर जिले की छात्रा कुमारी आंचलपुरी ने जीडब्ल्यू एडवांस 2026 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए एसटी पीडब्ल्यूडी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। छिंदवाड़ा में अवैध खनन के मामले में उमरी नाला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें पैदल न्यायालय पेश किया है। शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कटनी में मलेरिया से बचाव और रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। खरगोन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जिले में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। नशे को कहो ना अभियान के अंतर्गत शाजापुर में आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खन्ना में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति और निदेशक की बैठक कल 4 जून को होगी। शहडोल जिले में श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नागरिकों से श्रम पहरी बनकर श्रम विभाग को सहयोग देने की अपील की गई है। नीमच के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले 2 वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगली बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम है और आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राकेश मौर्य। तो सबसे पहले जयराम जी की भाई बहनों, और आप सुन रहे हैं ग्राम सभा कार्यक्रम 103.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बैतूल से। आज 3 तारीख है और आज विश्व साइकिल दिवस है। अब साइकिल का जब हमें नाम लिया तो कुछ याद आया होगा, कुछ पुरानी यादें आई होगी जहन में, जिनका जन्म 1970 और 80 के मध्य हुआ है वो जानते हैं कि साइकिल का कितना क्रेज हुआ करता था। लेकिन समय बदलने के साथ साथ मोटरसाइकिलों की भरमार हो गई, लेकिन साइकिल की उपयोगिता अभी भी बनी हुई है किसान भाइयों, क्योंकि छोटे छोटे काम जो घर के होते हैं, चाहे घर से खेत जाना हो या गांव में कहीं पर जाना हो, गांव के स्कूल में बच्चों को छोड़ना हो, तो साइकिल बिना खर्चे का और सेहत के लिए भी फायदेमंद एक ऐसी सवारी है जो हमेशा हमारे काम आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि साइकिल चलाना यानी पर्यावरण बचाना, सेहत बनाना और जेब भी बचाना। 1 लीटर पेट्रोल बचेगा तो समझो 2 किलो कार्बन कम हुआ। तो इतनी महत्वपूर्ण है ये साइकिल। किसान भाई, पहले के जमाने में ट्रैक्टर नहीं थे, बैलगाड़ी और साइकिल ही थी।

0: हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि साइकिल की कैरियर पे दो बोरी खाद लाद के 10-10 20-20 किलोमीटर दूर खेत तक ले जाते थे। और आज भी देखो बहुत सारी जगह पे दूध वाले, सब्जी वाले, अखबार बांटने वाले सब साइकिल से ही तो काम करते हैं। अब साइकिल यदि रोज 30 मिनट हम चलाते हैं तो क्या फायदा होता है? दिल यानी कि हार्ट मजबूत होता है और मधुमेह की बीमारी नहीं होती, यानी शुगर कंट्रोल में रहती है, तो डॉक्टर की फीस बचती है। ये तो सेहत का हुआ, सेहत के नजरिए से इसका फायदा हुआ। अब पर्यावरण की बात करें तो ना धुआं ना शोर, हवा भी साफ रहती है। अब बचत की बात कर लेते तो महीने का कम से कम हम ये समझ लें कि यदि साइकिल का उपयोग हम करें तो 1,000-1,500 रुपए का पेट्रोल तो बचेगा ही बचेगा। मान लीजिए 1,000 रुपए का पेट्रोल ही बचा तो 12,000 रुपए साल के हम बचा सकते हैं उसमें, है ना? तो पर्यावरण बचाना है तो साइकिल चलाइए, सेहत बनाना है तो साइकिल चलाइए, और अपनी जेब को बचाना है तो साइकिल चलाइए, है ना? तो आज विश्व साइकिल दिवस पर ये संदेश, ये बातचीत, ये चर्चा, ये विचार आप तक संप्रेषित हुआ, आप तक पहुंचा। और अभी आपको एक चीज बताऊं, मैं इस विषय पर हम समापन की तरफ चलें उससे पहले बताऊं, बैतूल में स्थानीय स्तर पर जब हम देखते हैं सुबह सुबह, चाहे कॉलेज रोड हो, चाहे पुलिस ग्राउंड के आसपास का एरिया हो, आज भी कई ऐसे हमारे जो नागरिक हैं जो बढ़िया साइकिल के ऊपर घूमते हैं। 30 मिनट साइकिल रोज चलाना चाहिए ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं, तो ना घुटनों में दर्द होगा, ना आपका कोई दिल की बीमारी होगी, ना कोई शुगर वगैरह होगी। तो स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाइए, पर्यावरण बचाने के लिए साइकिल चलाइए। आज विश्व साइकिल दिवस पर एक छोटी सी बातचीत हमने आप तक भेजी। चलिए लौटे हैं अब अपने खेतों की तरफ। तो खेतों की यदि हम बात करें तो खरीफ का सीजन हमारा शुरू हो गया है। खरीफ के सीजन के लिए आप लगे होंगे तैयारियों में। एक सबसे महत्वपूर्ण बात खरीफ सीजन की यदि हम करें, खाद बीज का सही प्रबंधन होना बहुत जरूरी है, कम लागत और ज्यादा उत्पादन। अब बिना सोचे समझे यदि खाद डाल दोगे, नकली बीज बो दोगे तो पूरी फसल चौपट, मेहनत भी गई और पैसा भी गया। इसलिए प्रमाणित बीज ही खरीदिए। दुकानदार बोलते हैं कई बार कि भैया ये नया बीज है, ये अच्छा डबल उत्पादन देगा, मत फंसना। हमेशा सरकारी संस्था या विश्वसनीय कंपनी का टैग जो लगा हुआ होता है उसका बीज लीजिए, उसका बिल लीजिए। बीज उपचार बहुत सारे किसान भाई इसमें थोड़ी सी लापरवाही करते हैं। बोने से एक दिन पहले 2 ग्राम बाविस्टिन, 5 ग्राम टाइकोडर्मा, ये 1 किलो बीज में मिलाइए। दीमक और फफूंद से बचाव होगा, यानी 10 रुपए का खर्चा और 10,000 का फायदा जैसी बात यहां पर लागू होती है। अब बीज दर आपको सही रखना चाहिए, इस पर भी बहुत सारे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। यदि सोयाबीन की हम बात करें 25 से 30 किलो प्रति एकड़, मक्का की बात करें तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़। ज्यादा बीज डालोगे ना तो पौधे कमजोर होंगे और बीमारी ज्यादा लगेगी। एक बातचीत हम आपको सुनाएंगे, उसमें वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हमें डॉक्टर जो विजय वर्मा जी बताएंगे इस पर बहुत सारी बातें। और कुछ बातें जो हमने आपके लिए आज बताने के लिए तैयार की है वो एक दो चीजें हैं कि मिट्टी की जांच कराओ, मिट्टी खुद बोलेगी कि नाइट्रोजन कम है या फास्फोरस ज्यादा है। अंधाधुंध डीएपी मत डालो। सोयाबीन में 35 किलो डीएपी और 20 किलो एमओपी प्रति एकड़, बस यूरिया की जरूरत नहीं। और हाँ, गोबर की खाद 2 ट्राली प्रति एकड़ जरूर डालो, क्योंकि मिट्टी की जान है। तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखिए। 15 दिन पहले मिट्टी का परीक्षण बहुत सारे किसान भाइयों ने करवा लिया होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक के जरिए इसकी निःशुल्क जांच होती है। संतुलित खाद एनपीके का अनुपात 4:2:1 का रखो, केवल यूरिया से मिट्टी बंजर हो जाएगी। जैविक खाद की बात करो, गोबर, वर्मी, नाडेप, जीवामृत, रासायनिक से 25% तक कम करो, जैविक 25% तक बढ़ाइए। सही समय पर बुआई करें, डीएपी बुआई के समय देना है, आप तो जानते ही हैं। यूरिया 2 बार में 25 दिनों 45 दिन बाद, और बीज खाद को नमी से बचाओ, बोरियों को लकड़ी के पट्टे पर रखो, ठीक है। और हाँ भैया, एक जरूरी चेतावनी और है, बाजार में जब भी खरीदी करें देख परख कर करें, पैकेट पर कंपनी का नाम, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट बिल्कुल देखिए, और ज्यादा शक हो तो कृषि विभाग से टोल फ्री नंबर पर आप 1800180151 पर कॉल कर सकते हैं। कौन सा नंबर? 1800180155 पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे आप बातें। अब हम आपको बातचीत सुनवा रहे हैं डॉक्टर विजय वर्मा, वो बता रहे हैं कि खरीफ सीजन की और क्या क्या तैयारियां करनी है, विस्तार से सुनते हैं, आइए।
1: यहाँ मैं 2 बातें स्पेशली करना चाहता हूँ, खासतौर से सोयाबीन फसल के संबंध में, कि जो सोयाबीन की फसल है वो निरंतर हमारे क्षेत्र में उसमें उत्पादन में कमी आ रही है, और उसमें कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं, मतलब हमसे मीन्स हमारे किसान भाइयों से हो जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमको सोयाबीन लेना ही नहीं चाहिए, वहां भी हम सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि जिन खेतों में भी पानी रुकता है, जल भराव की स्थिति रहती है, उन खेतों में सोयाबीन की फसल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी खेत में पानी भर जाए और वो 4 घंटे अगर भरा रहेगा तो हमारी फसल को सीधा नुकसान होता है। तो ऐसे खेतों में हम सोयाबीन की फसल का चयन ना करें, और अगर हम फसल का चयन करते भी हैं, मान लीजिए कि हमको सोयाबीन ही बोना है, तो उस खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। ये 2 बातें सोयाबीन के लिए विशेष रूप से हमारे किसान भाई ध्यान रखें, क्योंकि जिस प्रकार का वर्षा का वितरण विगत 3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कभी तो 8 इंच वर्षा एक दिन में हो जाती है और फिर 20 दिन का सूखा पड़ जाता है, तो ये दोनों स्थिति हमारी फसल के लिए नुकसानदायक है। जिस दिन 8 इंच बरसात होगी हमारे खेतों में पानी भर जाएगा और हमारी फसलों को नुकसान होगा, और उसी प्रकार से जब 20 दिन के लिए ड्राई स्पेल पड़ जाएगा तो नमी की कमी से हमारी फसल को नुकसान होगा। तो फसल चयन के मामले में हमारे किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दें कि कौन से खेत में हमको कौन सी फसल लेना, एक बात ये हुई। दूसरी बात, सोयाबीन में जो हमने देखा है कि हमारे किसान भाइयों को एक समस्या आती है कि वो बोनी कर देते हैं और अंकुरण कम आता है या खेत में बुआई फेल हो जाती है, तो वहां 2 प्रकार का नुकसान किसानों को फिर हो जाता है, एक तो आर्थिक नुकसान हो जाता है और दूसरा उसमें फसल भी वो नहीं लगा पाता है। तो यहाँ एक बात फिर ध्यान आपको रखना है कि आप चाहे बीज कहीं से खरीदें, चाहे आप घर का बीज लें, चाहे आप सोसाइटी से लें, चाहे आप बीज निगम से लें, चाहे आप कृषि विज्ञान केंद्र से लें, चाहे और कहीं से लें, उस बीज को उगा के अवश्य देख लें। अगर वो 60-65% से कम अंकुरण क्षमता देता है तो उस बीज को कदापि ना बोएं, क्योंकि उससे आपके खेत में अंकुरण सही मिलेगा नहीं, पौध संख्या आपकी होगी नहीं और आपको फिर नुकसान उठाना होगा। तो सोयाबीन के क्षेत्र में मुख्य रूप से ये 2 बातें हो गई। फिर एक तीसरा बिंदु है सोयाबीन में कि इसमें बीजोपचार अवश्य करना है। बीजोपचार के लिए जो भी दवा आपके पास उपलब्ध हो, मैं किसी दवा विशेष की बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, परंतु जो भी दवा आप उपयोग में लेते हैं, बीजोपचार करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि बीजोपचार इस प्रकार से करें कि जिस कलर की दवा आप बीज में लगा रहे हैं उस कलर का बीज हमारा हो जाना चाहिए, तब वो सही बीजोपचार कहलाता है। अब एक और बात आती है कि साहब खरीफ के मौसम में तो हमारे पास बोने का बहुत कम समय रहता है, बहुत कम समय मिल पाता है, और उस जल्दबाजी में किसान भाई उसका बीजोपचार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ वही बात मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी व्यवस्था अभी से बना के रखने की आदत डालें।

लीजिए, पहले से 10-15 दिन पहले आप बीज ले आइए, तभी तो आप उगा के देखेंगे। और उसका बीजोपचार भी कर लीजिए। बीजोपचार ऐसा नहीं है कि बोते वक्त ही करना है, आप 4 दिन पहले करके बीजोपचार रख लें। क्योंकि ये 3 पॉइंट को अगर आपने सोयाबीन में ध्यान रख लिया तो आपकी लगभग आधी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सोयाबीन से संबंधित बात मैं किसानों से करना चाहता हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कौन सी जाति बोएं, किस प्रकार की जाति बोएं, क्योंकि उस झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जातियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही फर्क पड़ता है मैनेजमेंट से और मौसम से। तो आप अगर कोई भी जाति बोलेंगे, मौसम गड़बड़ हो जाएगा तो वो गड़बड़ होना ही है, और अगर आपका प्रबंधन गड़बड़ है तो भी वो गड़बड़ होना है। तो बीज की व्यवस्था अभी से कर लें, उसको उगा के देख लें और उसका बीजोपचार अवश्य करें। और जिस खेत में आप सोयाबीन बोने जा रहे हैं उस खेत का जल निकास अवश्य कर लें। अब आती है बात दूसरी फसल जो प्रमुख रूप से हमारे जिले में हो रही है, वो है मक्का।

0: भी वो गड़बड़ होना है तो बीज की व्यवस्था अभी से कर लें, उसको उगा के देख लें और उसका बीजोपचार अवश्य करें, और जिस खेत में आप सोयाबीन बोने जा रहे हैं उस खेत का जल निकास अवश्य कर लें। अब आती है बात दूसरी फसल जो प्रमुख रूप से हमारे जिले में हो रही है, वो है मक्का। अब मक्का में क्या होता है, मक्का में हमारे किसान भाई या तो उसको बो देते हैं सीड ड्रिल से, तो ये सीड ड्रिल से बोने की फसल है ही नहीं।
1: अच्छा,
0: ये तो लगाने वाली फसल है। इसमें जो अंतर रखा जाता है 2 फुट बाई 1 फुट का अंतर होना चाहिए, 1 एकड़ में 26,600 पौधे आना चाहिए। अगर इस पौध विन्यास का हम ध्यान रख लेंगे, केवल इस पौध विन्यास का ध्यान रख लें, 2 फीट बाई 1 फीट पे मक्का को लगा दें, और दूसरी बात कि उसकी मिट्टी चढ़ा दें, ये दो काम यदि हमने कर लिया तो मक्का का उत्पादन आपको निश्चित रूप से मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो ये दो मुख्य हमारी फसलें हैं बैतूल जिले के लिए, इनमें हमको ध्यान रखना है। इसको सीड ड्रिल से कदापि ना बोएं, 30 किलो 40 किलो बीज का उपयोग बिल्कुल ना करें। अगर हम 2 फीट बाई 1 फुट पे दाना लगाते हैं हाथ से, या आजकल तो इसकी बोने की मशीन भी आ गई है, अगर उसका आप उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 5 किलो से अधिक बीज प्रति एकड़ नहीं लगेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है। अब आती है बात आपकी, आप कहेंगे कि खाद के बारे में बता दीजिए, तो बैतूल जिले में तो दो ही खाद चलती है, एक DAP दूसरी यूरिया। तो हमारे किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि इन फसलों को मिट्टी की जांच के आधार पर आप उर्वरक का प्रबंधन करिए। मिट्टी की जांच के आधार पर आपकी जमीन को कितनी नत्रजन, कितना फास्फोरस, कितने पोटास की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कीजिए। आप लोग अभी DAP और यूरिया का उपयोग करते हैं, पोटास उसमें से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो इनका आपको ध्यान रखना होगा। तो आप लोगों के पास मिट्टी की जांच जिन्होंने करा ली होगी उनके पास मृदा स्वास्थ्य पत्रक होगा, उसके आधार पर आप उर्वरक का प्रबंधन करें। और अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं भी कराई है तो अभी भी हमारे पास समय है, 8 दिन में जो हमारा लैब है वो मिट्टी की जांच कर देता है, तो वो जांच करा लें, उसके आधार पर उर्वरक प्रबंधन करें। उर्वरक प्रबंधन में अधिकता हमेशा नुकसानदायक है, इसका आप लोग ध्यान रखें। फिर चाहे आप मक्का बोएं, चाहे आप सोयाबीन बोएं, खरपतवार नाशक का उपयोग आजकल बिल्कुल कॉमन हो गया है, हर कोई खरपतवार नाशक का उपयोग करता है, तो खरपतवार नाशक का उपयोग करते वक्त सही दवा का सही समय पर और सही मात्रा में ही उपयोग करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। कभी भी खरपतवार नाशक का समय निकल जाने के बाद अगर आप उपयोग करते हैं तो वो फसल पर नुकसानदायक है और उससे हमारी ज़मीन को भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए सही समय, सही मात्रा और सही दवा का उपयोग आप करें। उसकी जानकारी के लिए आप किसी भी समय कृषि विज्ञान केंद्र या हमारे वैज्ञानिकों से या कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करें और सही दवा प्राप्त करके उसका उपयोग करें।
1: क्या हमारे बैतूल में जैविक खेती करने वाले किसान भी हैं जो शुद्ध जैविक मक्का का उत्पादन करते हैं, यदि आपके ध्यान में यदि कहीं है तो?
0: अभी मक्का के जैविक उत्पादन में हमारे किसान भाई बैतूल जिले में तो
1: रुचि नहीं दिखा रहे हैं,
0: अभी नहीं रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और देखिए, अगर मक्का की खेती हम जैविक में करेंगे तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये न्यूट्रिशन की हैवी फीडर क्रॉप है, ये ज़्यादा न्यूट्रिशन जमीन से प्राप्त करती है।
1: अच्छा,
0: तो जैविक अगर हमको करना है तो कम से कम 2 साल तक हम जमीन में जैविक उसका उपयोग करें और उसके बाद मक्का को लगाएं, ताकि जितनी अधिक माइक्रोबियल पॉपुलेशन हमारे खेत में उपलब्ध हो जाए तब आप मक्का की खेती जैविक रूप में कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मक्का क्या, हमको तो अब हर प्रकार का जो अनाज है उसका रसायन मुक्त उत्पादन ही करना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है। तो यहाँ पे किसान भाई जो अधिकता में उर्वरक का प्रबंधन कर रहे हैं या उपयोग

0: उनके लिए आवश्यक है कि वो चलिए बंद तो नहीं कर सकते या बंद नहीं करें तो कम से कम मिट्टी की जांच करा लें और जांच कराने के बाद जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा।
1: हाँ, एक नियंत्रित उपयोग हो जाएगा, संतुलित उपयोग हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, गन्ना वगैरह के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे?
0: अभी देखिए, गन्ना तो अभी ये ग्रीष्म काल चल रहा है और हमारे किसान भाइयों ने जिनने भी कटाई उनकी फरवरी मार्च में हो चुकी होगी तो मिट्टी चढ़ा दी होगी, उर्वरक का प्रबंधन कर दिया होगा और इस समय गर्मी में केवल पानी की व्यवस्था करते रहना है और दूसरा ये है कि कीट प्रकोप के बारे में निगरानी करते हुए जब भी ऐसी समस्या गन्ने में दिखाई पड़ती है कीट की या रोग की, रोग तो अभी गर्मी में संभव नहीं है पर जो कीट की प्रॉब्लम है वो आती है, तो अगर ऐसा कहीं दिखाई पड़ता है तो कुछ इस सलाह ले लें और कीटनाशक का प्रयोग करके उनका प्रबंधन करें और बाकी सब कुछ तो हमारे किसान भाइयों ने कर दिया होगा। पर यहाँ भी मैं फिर एक मतलब बात कर इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये गन्ना भी जो हमारी एक वर्ष की फसल है, एक साल की फसल है, उसमें उर्वरक प्रबंधन एक अलग तरीके से होता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: पर जहाँ तक हमने अभी तक देखा है कि वही डीएपी और यूरिया का उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं और गन्ने को माइक्रो न्यूट्रिएंट की सबसे अधिक आवश्यकता है।
1: अच्छा।
0: तो मिट्टी की जांच करा के जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हमारी मिट्टी में है वो जब तक हम पूर्ति नहीं करेंगे गन्ने का अच्छा उत्पादन हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारा चूक रहा है, हम केवल डीएपी यूरिया और बहुत हुआ तो सुपर फास्फेट डाल देते हैं, पोटास भी डाल देते हैं गन्ने में, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट में पूरी चूक हो रही है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में भी किसान भाइयों को अब सोचना पड़ेगा अगर गन्ने का सही उत्पादन हमको लेना है तो, चूंकि ये गन्ना है एक वर्ष की फसल है, अगर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, आयरन है, मैग्नीज है, आपका मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है, ये जो कम हो जाते हैं तो गन्ने के उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो गन्ने के भी किसान और जो भी आप खेती कर रहे हैं, दूसरी फसलों की भी खेती कर रहे हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि मिट्टी की जांच अवश्य करा लें और मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरक प्रबंधन करें।
1: चलिए किसान भाइयों, ये बातचीत आपने सुनी ध्यान से और अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, बढ़िया सीजन की तैयारी कीजिए, अच्छा फसल उत्पादन कीजिए, यही हमारी शुभकामना है। और अब हम आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत, क्योंकि बहुत देर से हम बातें बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए तो क्या बात है, आइए सुने।

ये राजस्थानी लोकगीत था किसान भाई। और अब एक छोटी सी और बात आपसे कर लें, फ्लोरीकल्चर यानी कि फूलों की खेती। फूलों की खेती एक ऐसा विषय है जिस पर यदि हम ध्यान दें तो बहुत सारा फायदा हमको हो सकता है। आपको पता है बैतूल में आठनेर के पास एक गांव है गुनखेड़, और यहाँ सब बढ़िया अच्छी इसकी खेती होती है सेवंती की। और एक और जगह है वहाँ, ये अपने बाजपुर के पास भी कुछ किसान भाई इसको लगाते हैं, तो वो एक अच्छा काम हो सकता है। फूलों की खेती पर भी हम ध्यान दें, फूलों की डिमांड बहुत रहती है त्योहारी सीजन में, शादी ब्याह के सीजन में बहुत सारी उसकी डिमांड होती है। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दीजिए, बाकी जो पारंपरिक खेती है वो तो हम करते ही हैं। और एक और बताना चाह रहा था मैं कि औषधीय जो फसलें होती है, औषधीय फसलों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी आज की तारीख में बहुत उभरता हुआ बाजार है, क्योंकि लोग सेहत के प्रति जागरूक बहुत हो रहे हैं, है ना। तो पहले आधा एकड़ से शुरू कर सकते हैं, जब सीख जाएंगे तो बढ़ा लीजिएगा, है ना। और प्राकृतिक तरीके से आप इसका उत्पादन करें, उसका कीमत, उसका मूल्य उसको ज्यादा मिलेगा। और यदि प्रोसेसिंग कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है ना। तो दो चीजें हैं, फूलों की खेती और औषधीय खेती। अब इसमें एक और तीसरी चीज भी हम आपको बताएं, सुगंधित जो उत्पाद बनते हैं, चाहे हम इत्र की बात करें या परफ्यूम की बात करें, दोनों अलग अलग चीजें होती है। इनमें विशेष प्रजाति के फूल, उनका उनकी सुगंध इस्तेमाल की जाती है। अब आप सोचिए, कन्नौज जो है हमारे देश में सबसे बड़ा केंद्र है इत्र का। एक कुछ दिनों पहले हमारे चिचोली आलमपुर में इसकी खेती शुरू हुई थी, जिरेनियम की, एसेंशियल ऑयल के रूप में ये बेचा जाता है, इसका तेल निकालकर बेचा जाता है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। और अभी मैं आपको बताऊं, यदि इसके रेट की बात करें तो कम से कम 13 से 14 हजार रुपए प्रति लीटर इसका तेल बिकता है। थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है, थोड़ा सा कम ज्यादा होता है मंडी में भाव, लेकिन जो इसके जानकार हैं बाजार के, वो ये कहते हैं कि भाई बहुत नीचे जाएगा यदि रेट तो 12 हजार तक जाएगा, 11.5 तक जाएगा, लेकिन इससे नीचे अभी तक के बाजार में रेट इसका सुनाई नहीं दिया है। और इसके खरीदार जो हैं वो बिल्कुल इसी बात की उसमें ढूंढते रहते हैं कि भाई कौन किसान इसको कर रहा है, जिरेनियम कर रहा है या सुगंधित, तो उसमें मेंथा की खेती हो सकती है, लेमन ग्रास की खेती हो सकती है, बहुत सारे, और जापानी पुदीना है बहुत सारा। हमारे यहाँ बैतूल में आपको बताएं, करीब 20 से 25 साल हुए हैं उसके पहले सावलमेंडा में तिखाड़ी का तेल जो होता है, तिखाड़ी तो बैतूल ऑयल के नाम से वो बेचा जाता था, और उसकी खेती होती थी बहुत अच्छी, क्योंकि उधर साइड का क्लाइमेट उसके अनुकूल है, उसका जो पर्यावरण है, उसका जो वातावरण है। हालांकि हो कहीं भी सकता है, आप इससे बेफिक्र रहिए, क्योंकि बैतूल से सावलमेंडा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो बैतूल ऑयल के नाम से वो बिकता था, लेकिन अब उस समय उसका बाजार थोड़ा सा कठिन होता था मिलना लोगों में, लेकिन अब धीरे धीरे करके भैया अब तो लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छा एक और बात बताऊं आपको, कच्ची घानी का जो तेल है, चाहे मूंगफली के तेल की बात करें, अलसी की बात करें या जगनी की बात करें, कच्ची घानी, वो भी लकड़ी की कच्ची घानी, आजकल उसके लिए भी लोग बड़े दीवाने हो रहे हैं कि भैया ये तेल हमको कहाँ मिलेगा। हमारे बैतूल जिले में बहुत सारी जगह पर कुछ लोगों ने इसकी तेल घानी लगाई है, और वो बढ़िया तेल बना के बेच रहे हैं, कुछ लोग घर से बेच रहे हैं, कोई अपना ब्रांड बनाकर बेच रहा है, अच्छा काम है। इस पर भी विचार कीजिए, अपने खेत में जब आप, मान लीजिए आपने मूंगफली लगाई है, तो भाई मूंगफली लगाई है तो वहीं पे लकड़ी की कच्ची घानी लगा दीजिए, और सीधे बोलिए खेत से सीधे आप लेके जाइए तेल, तो भरोसा बढ़ता है। किसान जब अपने खेत से उत्पाद बेचने की जब बात करता है तो ग्राहक का विश्वास बढ़ता है उसके ऊपर, है ना।
अब इसमें भी अब भी आप एक चीज और जोड़ दें कि नहीं, हमने तो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बिना

रासायनिक खाद के सारा उत्पादन किया, तो फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो और मार्केट आपको मिल जाएगा, है ना। कुछ बातें हैं जो मन में आ रही थी, आज आपसे शेयर की है, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसका फायदा मिलेगा, है ना। चलिए अब बातों को विराम दे देते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं, मूड फ्रेश होगा आपका भी मेरा भी। एक और लोकगीत बुंदेलखंडी आपके लिए।

चलिए भैया, ये बुंदेलखंडी लोकगीत आपने सुन लिया। अब आपको इंतजार होगा कि भैया बाजार भाव यानी मंडी भाव क्या बोल रहे हैं। तो बुधवार का दिन है, आज 3 तारीख है। आज के जो मंडी भाव है, जो बैतूल कृषि मंडी से हमें प्राप्त हुए हैं, इसमें सोयाबीन पीला न्यूनतम 5,600 रुपये, अधिकतम 6,900 रुपये, प्रचलित 6,600 रुपये, चना न्यूनतम 4,000, अधिकतम 5,831, और अधिक प्रचलित भाव 5,580, मक्का न्यूनतम 1,770, अधिकतम 2,100 और प्रचलित 1,980, गेहूं न्यूनतम 2,100, अधिकतम 2,436 और प्रचलित 2,378, सरसों न्यूनतम 6,501, अधिकतम 7,900 और प्रचलित 6,600, मूंग न्यूनतम 6,801,

अधिकतम 7,351, प्रचलित 6,901, मसूर न्यूनतम अधिकतम और प्रचलित 6,000, तुअर 5,650, 6,151, प्रचलित 5,650, उड़द 5,000, 6,700 और 5,000। तो ये थे बाजार भाव। चलिए करें जयराम जी की अब चलने की तैयारी, करें घर चलते हैं, भूख लग रही है बहुत देर से, आप लोग भी भोजन कीजिए। लेकिन आकाशवाणी बैतूल के बाकी के कार्यक्रम आप सुनते रहिए। ग्राम सभा कार्यक्रम से राकेश मोर को अनुमति दीजिए। जयराम जी की जय, जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम किसान वाणी, यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ। श्रोताओं, जब हम सेहत की बात करते हैं तो अक्सर दिल का जिक्र सिर्फ एक अंग के रूप में करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिल सिर्फ खून ही नहीं पंप करता है, बल्कि हमारी खुशियां, हमारे रिश्ते और हमारी भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई है। हमारे सेहत को सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जो लोग अपने मन की बात साझा करते हैं, अपने रिश्ते को समय देते हैं और छोटी छोटी खुशियों को जीते हैं, उनमें तनाव और हृदय रोगों का खतरा अपेक्षाकृत कम हो जाता है। तो आज बात करेंगे दिल की सेहत और खुशहाल जीवन की, और शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो दिल की धड़कनों की तरह सदाबहार है। आइए सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आपका मनपसंद कार्यक्रम सेहत के बाद गीत के साथ। कभी कभी छोटी सी बात पर खुश हो जाना और कभी सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहना। मजे की बात तो यह है कि हम पूरे दिन दुनिया भर की बातें सुन तो लेते हैं, लेकिन अपने दिल की बात सुनने का वक्त ही नहीं रहता। कभी दिल कहता है थोड़ा आराम कर लो, कभी कहता है पुराने दोस्तों को फोन कर लो, कभी कहता है कभी कहीं घूम आओ, कहीं कहता है कि बस खुल के हंस लो। विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ सही खान पान ही नहीं, बल्कि खुशियाँ, दोस्ती, हंसी, अपनापन, सभी और सबसे के साथ बिताए हुए पल भी उतने ही जरूरी है। तो चलिए कुछ देर के लिए जिम्मेदारियों और टेंशन को एक तरफ रखते हैं और सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में कभी कभी बस वही करना चाहिए जो दिल चाहता है।

दिल चाहता है और सच मानिए, अगर इंसान अपने दिल की कुछ अच्छी ख्वाहिशों को सुनता रहे तो जिंदगी थोड़ी आसान और थोड़ी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, दिल की एक और दिलचस्प आदत होती है कि ये सिर्फ सपने नहीं देखता, ये रिश्ते भी संजोता है। कभी कोई मुस्कान, कभी कोई दोस्ती और कभी कोई याद, और फिर अचानक कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जिसकी मौजूदगी दिल को इतनी अच्छी लगने लगती है कि दिल कहाँ उठता है, बस यही एहसास बना रहे, यही रिश्ता बना रहे, यही इंसान मेरी जिंदगी में बना रहे। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में आते नहीं, दिल में बस जाते हैं, और जब कोई दिल में बस जाए तो फिर दिल की बस एक ही जिद होती है, वो है रहना है तेरे दिल में।

रहना है तेरे दिल में। ये सॉन्ग सुनते सुनते एक बात तो समझ आती है कि दिल सिर्फ प्यार का ठिकाना नहीं, हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल साथी भी है। लेकिन दिल की बात चल रही है तो जरूरी बात कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं श्रोताओं, हार्ट अटैक हमेशा अचानक नहीं आता। कई बार हमारा शरीर पहले से संकेत देने लगता है, जैसे सीने में दबाव या दर्द, बिना वजह अत्यधिक थकान महसूस करना, सांस फूलना या कंधे, गर्दन और जबड़े तक फैलने वाला दर्द। इन संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। दिल को सुरक्षित रखने के लिए रोज कम से कम 30 मिनट टहलना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अपना तनाव जितना हो सके कम करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना बहुत जरूरी है। आखिर दिल सिर्फ धड़कता ही नहीं, हमारी हर खुशी, हर रिश्ते और हर सपने को भी अपने साथ लेकर चलता है। और जब दिल की बात हो तो याद आता है कि एक ऐसा गीत जिसमें दिल पूरी शिद्दत से अपना सब कुछ समर्पित कर रहा है। आइए सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम का ये प्यारा सा गीत, आवाज कविता कृष्णमूर्ति की।

श्रोता, हम अक्सर अपने मोबाइल की बैटरी का ध्यान रखते हैं, लेकिन दिल की बैटरी को चार्ज करना भूल जाते हैं। और दिल की बैटरी चार्ज होती है अच्छी नींद से, खुलकर हंसने से और उन लोगों के साथ समय बिताने से जो चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। तो दिल को थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए और थोड़ी मस्ती करने का मौका भी दीजिए, क्योंकि जब दिल खुश होता है तो जिंदगी भी कुछ ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तो आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं। और आज हमने बात की है दिल की मजबूती पर, दिल को कैसे मजबूत रखें और इस दिल को मजबूत रखकर लंबी जिंदगी कैसे जिए। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांस और आवाज। तो लीजिए शुरू करते हैं कार्यक्रम एक ऐसी मधुर धुन से जिसे सुनते ही गांव की गलियां सावन की फुहार और कोयल की मीठी सी कूक याद आ जाए। पहले सुनिए ये गीत की धुन और पहचानिए, फिर सुनते हैं पूरा गीत।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम साज और आवाज यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर

0: और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अरबन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में

21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए एक गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए कुदरत फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन ने दिया है।

आइए अब सुनते हैं जवानी दीवानी फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है सिलसिला, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत शिवहारी का।

सिलसिला फिल्म के इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।
1: दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग मैडी कहते हैं।

रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे। और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों

एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स ने उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई।

इसे ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और राम मुखर्जी।

2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

दिल वही प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले, क्या बात है।

बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, राम जी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हसन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू हुई ये फिल्म बाद में रामजी लंदन वाले बनी। और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। रामजी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।

0: 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में प्रेरणा की तरह जिंदा है।
1: ये होटो को करके गोल सीटी बजा के बोल।

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शान संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सीक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया।

इसके बाद माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितनी थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

साल 2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनकी जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेट्री को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता है।

माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थी और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही

2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना।

माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, अलई पायते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: से आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर, स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है आपका मनपसंद कार्यक्रम मेरी पसंद। मेरी पसंद का पहला गीत हम आपको सुनवा

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आपने ट्यून किया है कार्यक्रम मेरी पसंद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कसूर से। आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की, समीर के बोल, संगीत नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम कलयुग।

0: इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम मेरी पसंद यही संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: चांद छुपा बादल में।
0: कार्यक्रम सुगम संगीत सुनने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार। अरे यार।

टैगोर के गीत सुन के कितनी निर्मल भावनाएं, कितने मुलायम जज्बात दिल में जागते हैं, कितनी गहरी हल्की तस्वीरें ध्यान की दीवारों पे सजने लगती हैं, कैसी कैसी यादें उभरती हैं। इन गीतों में पद्मा की नर्म लहरें, ब्रह्मपुत्र की गहराई है, घनेरे बरगदों की छांव है, कच्ची भूर के रेशमी धुंधलकों में लिपटे फूलों पे थरथराती ओस की बूंदे हैं। लगता है आंखों से ओझल दूर कहीं कोई एक तारा बज रहा है, निगाहों में जैसे गहरी हरी घास के मैदान फैलते जाते हैं और घिर आते हैं जैसे आकाश में वो बादल जो न जाने किसके संदेशे लेके आए। इस पाकीज़गी, मासूमियत और मोहब्बत की जादू भरी

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

0: बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैश्यम ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैश्यम ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kumar.

0: Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
1: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
2: Thank you very much.
3: Thank you.
1: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
2: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in deep dive into each of those aspects.
1: Absolutely. Mr. Tandon.
3: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है टैक्स में छूट जीएसटी का सरलीकरण डिजिटल क्रांति हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा जीएसटी रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें उज्ज्वला योजना की बात करें जनधन योजना की बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें सामाजिक सुरक्षा की बात करें पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया
1: जैसे भी शरद जी ने
3: बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से आप आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं तो There has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people exiting multidimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharadji?
2: I think it's a huge achievement because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than, Anubha, the population of many of the countries around the world. और देखिए हुआ क्या कि पॉवर्टी इंडेक्स की जो डेफिनेशन बदला गया यू नो वी चेंज द डेफिनेशन बिकॉज आप पॉवर्टी को पहले कैसे डिफाइन करते थे इतने रुपए रोज का आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है यू नो ऑन न्यूट्रिशन ऑन हेल्थ आपके पास घर नहीं है टुमारो यू गेट अ हाउस यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच हैज बीन यू नो सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट यू नो जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत सो आई

0: think now there are toilets at. So the multidimensional poverty index needs to be understood, Anubha, from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine. They may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities, absolutely, which is everybody's right and which should they should get.
0: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking. And it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, I mean, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pachaya aur middle class to usme aati aati kyunki isse naukriyan bani hain, isse logo ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun jo Tandon sahab meri baat se agree karenge ke mujhse jab log poochte hain kyunki hota kya jab aapki zindagi mein ye sab ghatnaye ghatti rehti hain welfare schemes, to you take it in your stead. Aapko lagta hai theek hai, ye to hona hi tha, but ye to mera haq hai, wagaira wagaira, aise khayal aate hain. Par bahut acha tarika isko dekhne ka kya, which I am sure the listeners of Akashwani would like to dwell upon and deep dive, is ke aap 2014 mein जब ये सरकार आई 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो. इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है. आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी. सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है. और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है. और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो GDP के दम पर. लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी GST, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया. मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके PLI योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी.
2: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है. तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं.
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की. तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए, जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन

0: मिला है।
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव। देखिए गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें
0: जी
1: प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं,
0: बिल्कुल
1: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट के नॉट एम्प्लॉय एवरीबडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर विच जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट। टूडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इमेमोरियल। सो वॉट इज न्यू? येस देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड। एंड लॉट ऑफ यंगस्टर्स एंड टूडे जस्ट ऑन स्टार्टअप इंडिया there are 2 lakh plus registered startups, and you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed, and government has created a startup fund
0: yes.
1: where because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so here government became an angel
0: right.
1: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, from being job seekers
0: yes.
1: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that yes, we want to work, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. If 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, for everybody to find employment, may not be possible in
0: yes.
1: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, you borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
0: they
1: a very, very active GDP.
0: Workers,
1: in fact,
0: actually.
1: We did an analysis recently which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
0: right.
1: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, people have opened their arms and embraced
0: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है, बिकॉज सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स। सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द tax reforms that the Modi government has initiated, if we look at the zero tax limit and whether, like you mentioned, the GST, not just the introduction of GST, but after that, last year we saw the GST 2.0 also. How have these tax-related reforms in the past decade impacted middle class? Sir Tandon, what would you say to that?
2: देखिए इसमें एक और पहलू भी है
0: जी,
2: कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ मिलाकर। तो टैक्स रिफॉर्म जो है आपने जिनके जिक्र किया उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें, हम लोगों को 40-40, 50-50 हजार रुपए साल का टैक्स बचा है, तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग। तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं, तो ये सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास आज बहुत खुश है और शायद मिडिल क्लास की चार पांच लेयर्स को भी अगर अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा।
0: शरद जी, यू नो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स, इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन, यू नो दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज, यू नो, इनफैक्ट चेंज फॉर

0: विच सेट कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते, पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज
1: है. जो पिछले 12 सालों में काम
0: जो काम किया है उसके आधार पर उन्होंने बोला. उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं. और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है.
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
0: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा. आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा. अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है. छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे. आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है. आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल. द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री.
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है. वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक. जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अशोक जी, पहले आपसे.
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है. और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं. ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है. अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं. तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं. अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह

0: की बात करें तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम
1: 2047
0: 47 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047। और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास

0: रिलेट्स टू विकसित भारत 2047। और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था। क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रेवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap bata mujhe.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har vargh ko hua hai, lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain. Ab aap dekhiye, agar hum बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजना, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं। और महिलाएं, चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम, दैट इज इंक्रीजिंग। एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं। आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूँ उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूँ ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड, वेयर डू सी द इंडियन मिडिल क्लास।

0: where it is going to be, and how much of a major factor will it be in India's development, Ashok ji?
1: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं रेसलर्स आ रहे हैं यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
0: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
0: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
2: It was a pleasure.
1: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News On Air. This program is also available on our YouTube channel, News On Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:45 होने को है। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यही संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।